बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: सारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल।
0: अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज।
2: Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था।

आपका चिंटू आ गया। चिंटू बड़ा हुआ है और मैं तुझे

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज।
3: Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?

0: मिनट के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 तक है, और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो DS 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो DS 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन
1: DS साइंस अकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: राणा जी खबर पक्को है वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

अपनों के संग हर दिन खासत, किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया, खेती की खुशबू, शहर की रौनक,

गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 तक है, और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम

बजे तक हम आपके साथ रहे, इसलिए आप रोज रेडियो DS 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए।

0: के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल गंगापुर सिटी। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के साथ इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों सुबह की बेला में आरंभ करते हैं आपका मनपसंद और फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइश। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: जी नाम बताएं।
1: नमस्ते सर, मैं शांति पटेल बोल रही हूँ।
0: शांति पटेल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: पिपरिया सागर, मध्य प्रदेश से।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: अखिया मिला कहीं अखिया चुरा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डे इसमें। कुल के धन्यवाद
1: जी सर, थैंक यू।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
3: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: सर ये सुनना है, पिक्चर का नाम है स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, उसका गीत है ये सूरज चांद सितारे।
2: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद। थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते, नाम बताएं।
1: मेरा नाम पेश कुमार मीणा है सर।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर हम सिद्धू मूसेवाले का प्रोडक्शन करना चला तो बढ़िया सर।
0: सुना रहे हैं सर आपको, आपकी सरवाइव के सॉन्ग।
2: अक्रम, मैंने लगता तो आपका वादा पर लगे हैं। वादा नहीं भूलिया, मैंने एक एक लफ्ज याद है। बेटी शहर पढ़ दी, इसलिए डरता कि पिंड एडजस्ट होगी कि नहीं होगी।
3: विक्रम, सारे पंजाबियों दी जड़ा पिंडा च ने, तू एक बार उन्हें पिंड लेके तो आ।
2: चलो आने।
4: ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हिट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: बताएं आपका
3: शहजाद खान पुरानी
2: निगाह। शहजाद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS से?
3: दिलवाले दिलवाले।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश के सॉन्ग।

0: कल तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया? 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए, दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:22 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: प्रियांश मीना।
3: प्रियांश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी मैं मलाना डूंगर मानोली से बात कर
3: रहा हूँ। बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: कल्याणी।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे गाना रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हृषि मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
3: हेलो
4: जी मैम, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
4: उमा शंकर पटेल बोलता हूँ।
3: जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: मैं बोलता हूँ भोपाल मध्य प्रदेश से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
4: गाना आप सुना दीजिए, भवरे गुनगुनाते हैं।
3: कौन सा सर?
4: भवरे गुनगुनाते हैं।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का जय जय अपनी मिट्टी अपनी कहानी गंगापुर की बात निराली

0: जी नमस्कार, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानी बोल रहा हूँ।
1: सर नमस्ते, सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जी फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं, ये फिल्म का नाम है हम और आप नहीं। इसका एक गाना है सावरी सलोनी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। सर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू दीदी, नमस्कार।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: सर नमस्कार, नाम बताएं आपका।
3: जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी जी।
4: हाँ जी सर, कौन सा? हाँ जी
3: हाँ मैडम, मुझे सुना दिए प्यार चुकता नहीं फिल्म का गाना, तुमसे मिलकर ना जाने की।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना रेडियो DS में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अनिल शर्मा मैम।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे
0: मैम? सिद्धू मूसे वाला चला दो।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश।

0: निगाहां कातल ने दिलां नूं ठगदे आ, साडा दिन विच नाम बोले रातां नूं जगदे आ, कोई किथे मार करो भेती रग रगदे आ।
1: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
2: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
3: अली
4: कहाँ से बात कर रहे?
3: गंगापुर सिटी।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: ये अंधा कानून है।
4: ओके सर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर।
2: चौधरी, निवेदन करता हूँ सर।
3: चौधरी जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस में?
2: गाना है आपकी दुश्मनी कबूल हो जाए।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर।
2: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं।
3: हारून जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
3: बताएं अरुण जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: फिल्म का नाम है आई मिलन की रात।
3: जी
2: उसमें से आप पूछा भी चला देना।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश कैसे?

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं,

या गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो DS 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो DS 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी हो, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो DS 89.6।

0: जी नाम बताएं सर।
1: ठंडीराम गुजर बोल रहा हूँ, नाम बुरका सिंह।
0: ठंडी राम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: ये तो लव कर लो।
0: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश, कैसे सुनो?

0: थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: हाँ, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हेलो नमस्कार जी।
3: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: मेरी काली कलूटी के नखरे बड़े।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मेरी बहन।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: कानपुर बड़ौदा से।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: कानपुर बड़ौदा से।
0: नाम क्या है?
1: प्रियांश।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: चौधरी के।
0: कौन?

0: सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग मैम, नाम क्या है आपका?
0: निशा कुमार सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: खम्मा गानी।
1: खम्मा खड़ी। ओके मैम।

0: सिक्स पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हाँ जी मैम,
0: मेरा शिफ्टिंग गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी नसिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मासूम शर्मा का किसे किने का गली में किसे किने का टाइम पे।
1: ओ किसे सुना रहे हैं आपको? फिर मैं इस पर ही गाना।
2: इसके बारे में क्या कहना है?

0: रेट वो डीएस दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
0: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 89.6 पे रेडियो डीएस
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: सावनकर गंगाधर कुंडलवाड़ी।
1: सर कौन सा नाम सुनना चाहोगे?
0: तू मेरा जानू है, तू मेरा दिल भर है।
1: ये तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी
1: जी, वेलकम।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: योगेश जांगड़े।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: छत्तीसगढ़।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मूवी है मोहब्बतें।
0: कौन सा सर?
1: मोहब्बतें।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: हेलो नमस्ते दीदी।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: लतीफ अहमद रैना।
1: कहाँ सर? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज मुझे सुना है मोरा फिल्म ना कजरे की।
1: ना कजरे की डाल।
0: हाँ
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सिमरन पटेल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: पिपरीय सागर मध्य प्रदेश।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परेगा ना रेडियस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: काड़ी काड़ी रे उक चारे सु
3: कहाँ से बात कर रहे
2: हो? गंगापुर से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: एक काले रंग की गाड़ी में उक पुर से काड़ी काड़ी रे उक
4: आज सारा चार्ज करते जरूर मैडम।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ सर, नाम क्या है आपका?
1: रफी खान, लोगो मस्जिद के पीछे है।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा।
0: वो कैसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना।

दोस्तों 12:18 का समय हो चुका है। फिलहाल इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो रियल कानपुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसिंगा। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद ले रहे हैं आपके मन पसंद हनी फरमाइश कार्यक्रम का।

0: respondo?
1: Ah.
0: Eu sou o nome que Maria aqui para mim.
1: Hello?
0: हाँ जी मैम क्या आपका
1: गुलशन
0: कहाँ से बात कर रहे
1: गंगापुर सिटी
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी
1: कुंडली सॉन्ग
0: कुंडली सॉन्ग
1: हाँ
0: उसको मैम सुना रहे आपके परमेश्वर का

0: पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा। आप
1: रेडियो TS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का।

दोस्तों इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।

0: 96.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी।

सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी। मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया। खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी खुशी और

कुछ तो इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।

चौपाल की बात अपनों के संग हर दिन खा सक, किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया।

0: सुनते रहिए दिल से दिल 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
1: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।
0: तो मैं मर जाऊंगी।
1: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।

0: सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया। खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी खुशी और प्यार की बोली।

दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले सुने थे नए तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बोली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे। 89.6

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

सुनो सुनो गंगापुर वासियों, बात हमारी ध्यान से सुनियो। चुनाव का आया है मौसम, अपना वोट समझदारी से चुनियो। भाई बहना, माता

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का

सुनो सुनो गंगापुर वासियों, बात हमारी ध्यान से सुनियो। चुनाव का आया है मौसम, अपना वोट समझदारी से चुनियो। भाई बहना, माता

तो वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आए कहीं टिकते नहीं, पाते हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ कर दिल में लगा, जो कहती है कर के दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है। आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त और से फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो DS पर।
3: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: नमस्ते, कलवीर चौधरी अर्जी कर रहे हैं जी से।
3: सर नमस्ते सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: गाना तो जी यही रहे हैं।
3: हाँ जी बताइए।
4: गोरा मुखड़ा गुलाबी चढ़िया।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो DS 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो DS 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी है, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तेरे लखदा हुलारा रंग रारा रे रारा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: हेलो, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगा पट्टी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: किटे सूट पे दाग पे।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: सर नमस्ते।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: शहजाद खान पुराने नाम।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: जिंदगी की नाटी पे लड़ी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार गाना। हेलो।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: शादिर बोल रहा हूँ, दशहरा मैदान से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना है सुभान अल्लाह हसीन चेहरा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनें और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन
1: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
3: दोस्तों अभी आपने सुना है लोग फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके मनपसंद कार्यक्रम भजन संध्या का। कीजिए थोड़ा सा इंतजार, लेकर आज ही रहूंगा आपके बीच रेडियो डीएस भजन संध्या कार्यक्रम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

मधुर भजनों का आनंद लेने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना भजन को और सुनिए लेटेस्ट भजन।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

दौलत भी शौहरत भी अज सब कुछ कोड़ मेरे अखां सामे तू नहीं एहो दिल विच हौल मेरे अज 14 सालां बाद मुड़िया हां उन्हां रावां ते देख के उही हवावां क्यों अज वधियां सावां ने काश जे मिल जे तू ता जिंदगी सफल हो जावे तू गीत मेरे दा कल्ला कल्ला लफ्ज़ हो जावे।

0: धोते तेरा परिवार शायद छड़ के चल गया।
1: तो कुछ साल बाद मैं तेनू एक हाथ लिखिया ते उसने रोज पढ़ दी गई
0: पढ़ता सी तो लिख देना
1: हर रोज हर सवेर तू मेरी वेट कर ते मैनू वेखा वेखा तेरी छोटी जी स्माइल च सब कुछ पता लग जाए।
0: तेनू पता भी नहीं सी कि इन्नी छोटी जी उम्र च इतना प्यार हो सकता।
1: मैनू पता सी तू आएगा ते मैं तेनू दस सकां कि मैं तेनू किन्ना प्यार करदी।

हाँ जी सत श्रीकाल जी, मैं ताड़ा अपना जुगराज संधू। उम्मीद करता तुम मेरे वाला सरदार गाने बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, तो मेरे अगले सॉन्ग्स में सुनने ग्रैंड स्टूडियो के ऑफिशियली चैनल में सबसक्राइब करना ना भुल्यो। सत श्रीकाल जी।

0: दीदी आपके लिए ना रिश्ता आया है, देखो।
1: भागा हाड़ा होगा वो जिसकी गिला मेरा ब्याह होगा
0: एक बार देख तो ले।
1: ना।
0: ठीक है, देखा है कि सब भागा हाड़ा मिलेगा तो ना।